ऐसा सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुआ है। हजार रात में वहाँ भी एक रात हुआ है। आँख उठा के देखे जब वहाँ मेरे को नहीं, वहाँ एक पल भी पूरी कायनात हुआ है। वहाँ एक पल भी पूरी कायनात हुआ है।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे, प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

0: विश्व कप विच जर्मनी दी धमाकेदार जित, जापान ने की शानदार वापसी। फीफा वर्ल्ड कप दे चौथे दिन दियां मुख खबरां दे नाल विश्व कप डेली अपडेट विच तुहाडा स्वागत है। SBS पंजाबी तो मैं सुमित कौर लेके आई हाँ फीफा विश्व कप 2026 दे चौथे दिन दा न्यूज रैप। ग्रुप ई विच जर्मनी ने ह्यूस्टन स्टेडियम विखे वर्ल्ड कप विच पहली बार खेड रही कुरासाओ दी टीम नू 7-1 नाल हरा के धमाकेदार शुरुआत कीती। चार बार दी विश्व चैंपियन जर्मनी लई फेलिक्स मैटचा ने मैच दे 6वें मिंट विच गोल करके बढ़त दवाई। ए इस टूरनामेंट दा हुण तक दा सब तो तेज गोल भी सी। वर्ल्ड कप लई क्वालीफाई करन वाले सब तो छोटे देश कुरासाओ दे लिवानो कोमोनेंसियो ने 21वें मिंट विच गोल नाल स्कोर बराबर करके दर्शकां नू हैरान कर दिता। पर इस तो बाद जर्मनी ने पूरा दबदबा बनाया रखिया अते होर 6 गोल करके एक आसान जित दर्ज कीती। उधर ग्रुप एफ विच डैलस विच जापान अते नीदरलैंड्स विचकार रोमांचक मुकाबला 2-2 दी बराबरी ते खत्म होया। डच टीम ने कप्तान वर्जिल वैन डाइक अते क्रिसेंसियो समरविल दे गोलां दी बदौलत 2 बढ़त बनाई, पर जापान ने 2 वापसी कीती। पहला केतो नाकामुरा ने स्कोर बराबर किया अते फिर 88वें मिंट विच डाइची कमाडा ने हैडर राही गोल करके अपनी टीम लई कीमती अंक यकीनी बनाया। फिलाडेल्फिया विच कोट दिवुआर अते इक्वेडर पहली बार वर्ल्ड कप दे मंच ते आमने सामने हुए। इस मुकाबले विच कोट दिवुआर ने अहम जित दर्ज की। अमाद चालो ने 90वें मिंट विच गोल करके अपनी टीम नू 1-0 नाल जित दवाई। इसे दौरान मैक्सीको दे मोंटेरो स्टेडियम विच स्वीडन ने ट्यूनीशिया नू 5-1 नाल हराया। जापान अते नीदरलैंड्स दे ड्रॉ होण कारण स्वीडन हुण ग्रुप एफ विच इकल्ली सिखरली टीम बन गई है। उधर ऑस्ट्रेलिया दी सॉक्रूज टीम तुर्की खिलाफ 2-0 दी शानदार जित तो बाद पहली बार अपने बेस कैंप वापस परती है। इस जित नाल ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी विच अपनी स्थिति मजबूत कीती है, पर हुण ध्यान 19 जून नू संयुक्त राज अमरीका खिलाफ होण वाले अगले मुकाबले ते केंद्रित है। कोच टोनी पोपोविच दी टीम फिलहाल रिकवरी अते तैयारी ते ध्यान देवेगी। टोनी पोपोविच ने अगले मैच बारे कहा कि
1: Playing the host nation, so another special occasion for us, and we need to recover from this well, but also emotionally we need to recover because our young boys would never have experienced something like this. So we need to enjoy it, recover from it, and see how they are for the next match.
0: आओ हुण नज़र 5वें दिन दे मुकाबलियां ते करिए। स्पेन अपनी मुहिम दी शुरुआत टूर्नामेंट दी नवी टीम केप वुड खिलाफ करेगा, जबकि ग्रुप जी विच बेल्जियम अते मिसर दरमियान अहम टक्कर होवेगी। बाद विच ग्रुप एच विच यूरोगवाई दा सामना साउदी अरब नाल होवेगा, जबकि ईरान अते न्यूजीलैंड दीआं टीमां वी महत्वपूर्ण अंक हासिल करन लई मैदान विच उतरनगियां। नॉकआउट दौर दी दौड़ तेज़ होण दे नाल हर टीम लई इह मैच बेहद अहम साबित हो सकदे हन। तुसी हुणे फीफा वर्ल्ड कप 2026 दे चौथे दिन दा डेली अपडेट सुन के हटे हो। SBS पंजाबी तो मैं सुमित कौर ते फीफा वर्ल्ड कप 2026 दा हर पल SBS अते SBS ऑन डिमांड ते लाइव अते मुफ्त देखिया जा सकता है।

0: दोस्तों उम्मीद करते हैं कि तुसी भी फीफा दे मैचां दा भरपूर आनंद माण रहे होवोगे। हुण पेश है एक जानकारी प्रवासियां दे बारे भी कि इन्हां नूं कदों इमीग्रेंट कदों एमीग्रेंट ते किस समय माइग्रेंट कहना ठीक रहिंदा है। इस तो बाद लवांगे जी ब्रेक ते ब्रेक तो बाद तुहाडा प्रोग्राम इस तरह जारी और शारी रहेगा। जुड़े रहो SBS पंजाबी दे नाल।
1: तुसी हो SBS पंजाबी दे नाल।
2: SBS पंजाबी दे सारे स्रोतियां दा स्वागत है। दोस्तों साडे विच बहुत सारे या कहिए कि लगभग सारे ही ऑस्ट्रेलिया दे विच प्रवासी हां, पर की असी इमीग्रेट कीते एमीग्रेट कीते या फिर माइग्रेट कीते? इमीग्रेट यानी आई दे नाल, एमीग्रेट यानी ई दे नाल अते माइग्रेट एम दे नाल, इना तिन्ना दा ही संबंध एक देश तों दूजे देश विच जान नाल है। वर्तों विच अंतर सूखम हो सकते हन, पर इना नू अलग अलग समय ते वर्त्या जांदा है। आओ समझण दी कोशिश करदे हां कि इना नू कदों वर्त्या जांदा है। सब तो पहला इमीग्रेट, इस शब्द दा इस्तेमाल उदों कीता जांदा है जदों कोई किसे नवे देश आके वस जांदा है अपनी जन्मभूमि नू छड्ड के। इनू होर समझण लई इस उदाहरण नू सुणदे हां। परमिंदर दा परिवार 1997 विच ऑस्ट्रेलिया इमीग्रेट कर गया सी। या फिर ऑस्ट्रेलिया दी इमीग्रेशन नीति देश विच हुनरमंद कामियां नू लियाउण ते केंद्रित है। एक होर वाक सुणदे हां, गुरकीरत एक इमीग्रेंट है जो अपने बच्चियां लई एक नवीं शुरुआत अते मौकियां दी तलाश कर रही है। ते आओ हुण गल करदे हां एमीग्रेट दी। एमीग्रेट दा वर्णन तुहाडे देश तों बाहर किसे होर देश विच रहण लई कीता जांदा है। दूजे शब्दां विच इह सोचो कि किसे देश नूं छड्डना। एमीग्रेट नूं वाकां विच वरत के इस बारे समझ होर साफ हो जांदी है। जिवें कि परमिंदर ने नवीं नौकरी लई भारत तों एमीग्रेट करन दा फैसला कीता। पिछले कुछ सालां विच भारत तों ऑस्ट्रेलिया विच एमीग्रेशन वध्या है। गुरकीरत भारत तों एक एमीग्रेंट है। हुण तीसरा शब्द यानी माइग्रेट। माइग्रेट शब्द दा इस्तेमाल उदों कीता जांदा है जदों किसे खेतर दे अंदर या देश दे विचकार लोकां या जानवरां या पंछियां दी आवाजाई बारे जिक्र कीता जांदा है। इस नूं होर समझण लई पॉइंट ए तों पॉइंट बी वल जाण दे रूप विच सोचो, जो कि अस्थाई या स्थाई हो सकदा है। हुण माइग्रेट शब्द नूं उदाहरण राहीं समझदे हां। गुरकीरत भारत तों ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर गए। हर साल हंपबैक वेल अपने बच्चियां नूं जन्म देण लई अलास्का तों ऑस्ट्रेलिया दे गर्म पानियां वल माइग्रेट करदियां हन। या फिर हुनरमंद कामियां दी माइग्रेशन वधी है। भारती माइग्रेंट अक्सर अपने सभ्याचार नूं अपने नवें मुल्क विच सब नाल सांझा करदे हन। ते हुण आखिर विच इन्हां तिन्नां शब्दां नूं इक्को जिहे तिन्न वाकां विच वरत के अंतर नूं चंगी तरह समझिया जा सकदा है। जिवें कि परमिंदर दा परिवार 1997 विच ऑस्ट्रेलिया इमीग्रेट कर गया। परमिंदर ने नवीं नौकरी लई भारत तों एमीग्रेट करन दा फैसला कीता। अते तीसरा परमिंदर भारत तों ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर गए। तां इत्थों असीं इह समझ सकदे हां कि इमीग्रेट एमीग्रेट अते माइग्रेट इह शब्द सुनण विच इक्को जिहे ही लगदे ने, पर इन्हां नूं वख-वख समें ते वरत्या जांदा है। SBS न्यूज़ लई नैटली ऑस्टेरगो वल्लों तैयार कीती गई इस रिपोर्ट नूं पंजाबी विच अनुवाद करके तेजिंदर सिंह वल्लों पेश कीता जा रिहा सी।
1: फेसबुक उते SBS पंजाबी नूं लाइक करो, सांझा करो अते अपने विचार भी प्रगटाओ। फेसबुक उते SBS पंजाबी नूं लाइक करो, सांझा करो अते अपने विचार भी प्रगटाओ।
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
6: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.

0: बदकिस्मती दे नाल एक पुलिस नाके दे उते ए लोग पुलिस मुलाजम दी फायरिंग दा निशाना बन गए, जिदे च 9 वरियां दी आस्ट्रेलवी नैशनल बच्ची जान दी बाजी हार गई, जदके इस आस्ट्रेलवी परिवार दे बाकी लोग भी गोलियां वजन दे नाल फट्टर ने ते हस्पताली दाखल ने। सोमवार नूं इस मामले दे उते आस्ट्रेलवी प्राइम मिनिस्टर एंथोनी होणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच पाकिस्तानी सरकार तों मांग कीती है कि ओह जिम्मेदारां नूं कटहरे दे विच लियावे। इह तां खुशी दा मौका सीगा जदों कि इह परिवार खून दे विच नहला दित्ता गया। इधर पाकिस्तान तो काउंटर टैररिज्म डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों का आखना है कि फायरिंग करने वाले पुलिस मुलाजम या सीसीडी के मुलाजम को गिरफ्तार कर लिया है, इस वे वह जेल च बंद है। पुलिस जरिया का आखना कि इस आस्ट्रेलवी पर्थ फैमिली नू डाकू पै गए सन। पुलिस ने डाकुआ के उत्ते शक कारण फायरिंग की थी कि वह कार समेत इन्हों लोगों नू अगवा करके नस रहे ने, जिदे कारण यह मामला गलत फहमी का शिकार होया। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने एक सोशल मीडिया सनाह च ऐलान किया सीगा कि अमरीका ईरान समझौता तय हो गया है, दोवें मुल्क राजी ने, तो समझौते का यह मामला जनेवा च सिरे चढ़ेगा जिदी मजमानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के इस सोशल मीडिया सनाह तो बाद अमरीकी प्रेजिडेंट डोनल्ड ट्रंप होना ने भी ईरान समझौते बाबत ऐलान किया, जबकि ईरानी जिम्मेदारा ने भी सरकारी पद्धर से इस समझौते की तस्दीक की। चाइना ने इस जंगबंदी ते समझौते नू सिरे चाढ़न चे पाकिस्तानी कोशिशां दी तारीफ कीती है, जदके यूरोपी यूनियन दा आखना है कि ईरान तो पाबंदियां चुकण चे कई वरे लग सकते ने। याद रवे कि ईरान ने हुण तो थोड़ा चिर पहलो ताज़ा बयान चे करार दिता है कि समझौता अमरीकी नीयत जांचण ते ईरान वल्लों अमन नू एक मौका देण खातर कर रहे हैं। पाकिस्तान दे कब्जे च आए कश्मीर अंदर अज हड़ताल होण नू 8 दिन बीत चुके ने। कश्मीरियां दी अवामी एक्शन कमेटी दे पाबंदी तो बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी लई 1 करोड़ रुपये दे इनाम दा सरकारी ऐलान भी होया है, पर हजे तक उन्हां चों कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सकिया। इस अवामी लहर नूं एहतजाज लई लोंग मार्च दा ऐलान किया गया सीगा, जदके इह एहतजाजी लोग एक जुलूस की शक्ल च इस वेले रावला कोट पहुंच चुके ने, जिथे फोर्सिस ने इन्हां नूं रोकिया होया है। खबरां मिल रही ने कि कश्मीर दे विच इस वेले राशन की किल्लत पै गई है ते लोग परेशान ने। सरकार ने पूरे कश्मीर दे अंदर इंटरनेट बंद किया होया है और किसी किस्म की मीडिया कवरेज नहीं करन दिती जा रही। सरकार ते अवामी एक्शन कमेटी की गलबात दे मामले निबड़न की राह दे विच निकलन वाली वड्डी वजह यह है कि वह 12 असैम्बली सीटा जिन्हां नूं अवामी एक्शन कमेटी मुकाउण की मांग कर रही है। इहदे जवाब च सरकार का आखना है कि यह मामला आईनी है, ये लोग इलैक्शन लड़न असैम्बली च जाण ते उत्थे कानून साजी करके ये काम कर लैण ते सानूं कोई इतराज़ नहीं, पर धक्के दे नाल ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पिछले हफ्ते पाकिस्तान वालों एक बार फिर अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों के उत्ते एयर स्ट्राइक की गई, जिदे 26 हलाकतों की पाकिस्तानी तस्दीक की गई है। आख्या गया है कि ये वो लोग सन जो पाकिस्तान च फोर्सिस के टिकाणिया निशाना बनाते सन। पाकिस्तान तो इतलावा ते ब्रॉडकास्टिंग के फैडरल मिनिस्टर अतात आरण ने एक बयान च आख्या कि अफगानिस्तान च टारगेट टिकाणिया निशाना बनाया। दूजे पासे अफगान तालिबाना ने आख्या कि पाकिस्तान वालों किए गए हमलों च बेगुना औरतों के बच्चे मोए। अफगान तालिबाना के जिम्मेदार जबीउल्ला ने इस बारे सोशल मीडिया से कुछ मोन वाले बच्चों ते औरतों दी तस्वीर भी सांझियां कीतियां, जबकि पाकिस्तान का आखना है कि असी बार बार अफगानिस्तान नू कह चुके हैं कि वह अपनी धरती नू पाकिस्तान ते हमलों वास्ते वरतन वाले ग्रुपां तों पाक करे, पर उह साडी गल मन्नण तों इनकारी है। पाकिस्तान की फैडरल सरकार वालों पिछले हफ्ते 18 खरब 700 अरब तो वाधा वरेवार बजट मंजूर कर लिया गया है। इस बजट विच तनखाहदार तबके की घट्टो घट मजदूरी 44,000 रुपया महीना कर दी गई है, जबकि सरकारी मुलाजमान दी तनखावां ते पेंशन च 7% वाधा किया गया है। सूबियां नूं दिते गए उन्होंने हिस्से दे विचों इस वार पंजाब नाल धक्का किया गया है। पंजाब सरकार की रजामंदी दे नाल पंजाब दे हिस्से का 50% बजट दूजे सूबियां नूं दिता जाएगा, खास करके बलोचिस्तान नूं, जबकि यह 50% पंजाब नूं घट लभेगा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने नैशनल असैम्बली च इस बारे गलबात करदिया होया आख्या,
1: लीडर दी ऑपोजिशन ने फरमाया कि सूबों के जो मुआशी जो वसाइल हैं ये उनका हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। सिर्फ यही नहीं, 2010 का NFC अवार्ड जनाब स्पीकर पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा अवार्ड है जिसमें बलोचिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत सूबा है, बलोचिस्तान की मुतालबे के ऊपर उनका जो शेयर है 100% बढ़ाया गया चारों सूबों ने, और सबसे ज्यादा पंजाब ने अपना शेयर डाला। और आज हम 2026 के वक्त में हैं जनाब स्पीकर, इसको जर्ब दे लें तो ये 100 अरब रुपए से ज्यादा तजावज कर जाता है।
0: एसन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पंजाबी एक्टिविस्टा ने पंजाब दे हिस्से नू घट करके ए बजट दूजे सूबियां नू देण ते चिंता जाहिर कीती है, जबकि पंजाब दे हिस्से दा सूबा बजट अज पेश होण जा रहा है। कल 15 जून पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जहाज ट्रेनिंग दौरान केपी के सूबे के इलाके मरदान च डिग के तबाह हो गया। इस जहाज नूं चलाउंदे दोने पायलट भी हादसे दे विच अपनी जान गवा बैठे। सऊदी अरब बेस्ड एक न्यूज़ वैबसाइट मुजब एक वीडियो च वेख्या जा सकता है कि जहाज एक सड़क के नाल टक्कर खाण तो बाद रिड़दा होया तबाह हो गया। अग भड़क उठी, अग की लपेट च आम राई भी आए जो मोटरसाइकिल ते सवार सड़क तो लंघ रहे सन। फौज के इतलावा देने वाले महकमे ISPR ने जहाज के तबाह होने समय दो पायलट्स से जानो जान की तस्दीक करद आख्या है कि जहाज की तबाही किस कारण हुई, यदि वजह जानने लिए एक इनकुआरी कमेटी बिठाती है। लो जिले के पंजाब तो इस हफ्ते इन्ना ही, आते हफ्ते कुछ होर खबरों का निचोड़ लैके मसूद मल्ली SBS पंजाबी के सब सुनने वाले के रूबरू हाजिर हाओ।
2: जी हाजरीन, SBS पंजाबी वालों दिता जा रहा एक खास तोहफा। पंजाबी संगीत के सुपरस्टार करण औजला अपने पी पॉप कल्चर टूर तहत इस अगस्त ऑस्ट्रेलिया आ रहे ने। इस मौके SBS पंजाबी अपने स्रोतिया खास गिववे लैके आया है। असी दे रहे हाँ 4 मुफ्त पास, मेलबर्न के 18 अगस्त वाले शो ले 2 पास, सिडनी के 21 अगस्त वाले शो ले भी 2 पास। तो दोस्तों, जे तुसी करण औजला नू लाइव देखना चाहते हो तो SBS पंजाबी दे प्लेटफॉर्मा उत्ते अपनी नज़र बनाई रखो। मुकाबले विच हिस्सा लैण अते जितण दा मौका हथों ना जान देना। जी दोस्तों, तुसी जरूर देखना चाहोगे करण औजला नू आमने सामने, तो ये किवें देख सकते हो, डबल पासिस किवें जित सकते हैगे हो, इहदे वास्ते जल्द ही असी अपने सोशल मीडिया उत्ते जानकारी पावांगे, कुछ क्विज वगैरह पावांगे, तो तुसी विन कर सकते हो, कोई ड्रॉ करांगे तो तुसी उसनू विन कर सकोगे। दोस्तों जी, वेला हो गया एक ब्रेक का, तो मैं दसना चाहांगा कि ब्रेक तो बाद इमीजिएटली बाद थानू एक बहुत ही वधिया मुलाकात सुनानी है। वो हैगी जी फीफा नाल रिलेटिड, पर पंजाबी मुंडा, कहिंदे पंजाबी आ गए हुए, पंजाबी छा गए हुए, पंजाबी मुंडा फीफा दे विच खेड रहा है। ये हैगा जी सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड तो। तो इस गलबात का असी पहला भाग तुम सुनावे ब्रेक तो बाद, तो इसका दूजा भाग असी कल के प्रोग्राम सुनावे, वह भी जरूर सुनियो। तो मैं तुम्हें याद करना चाहाँगा कि जो प्रोग्राम हैगा पंजाबी का, हूँ तुम दिन में 2 बार सुन सकते हो, 4 to 5 यह लाइव पेश हों जी, जी साड़ी ऐप हैगी SBS ऑडियो उद्दे जाके सुन सकते हो, तो इसे का मुड़ प्रसारण रिपीट हों राती 9 to 10 SBS 2 के उत्ते, तो भी जरूर सुनया करो। दोस्तों लेंदे हैं ब्रेक, तो ब्रेक तो बाद जल्द ही मिलते हैं जी सरप्रीत सिंह दे नाल।
3: It feels good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
5: Savvy, Steven.
6: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
5: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
7: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
8: sbs.com.au/Punjabi nu apna online homepage banao. Taziyan khabran, chalant mamlyan ate manoranjan le sbs.com.au/Punjabi naal judo. ਕੀ ਤੁਸੀਂ SBS ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ SBS ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ।
2: ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਐਮ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਕਫਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਫੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਸੌਕਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਫੀਫਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਥੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ।
9: SBS South Asian ਉੱਤੇ SBS ਪੰਜਾਬੀ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ SBS ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੋਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਜੋ 2026 ਦੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸੌਕਰ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ SBS ਪੰਜਾਬੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
10: ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ।
9: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਆ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਫਾਰ ਦ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ? ਹਾਓ ਹੈਵ ਥਿੰਗਸ ਬੀਨ ਫਾਰ ਯੂ?
10: ਯੈ, ਇਟਸ ਬੀਨ ਗੁੱਡ। ਇਟਸ ਬੀਨ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ when we qualified for the World Cup, knowing that we'd be able to go to the World Cup was really nice. And then from there, it's just been about preparing for the World Cup. And yeah, like you said, bahut zyada proud feeling. Yeah, I think obviously representing the Punjabi community as well is a huge thing for me. And also the New Zealand as a country as a whole as well. So it's very fortunate to represent both countries. And yeah, I'm just excited to be here now.
9: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਬੈਕ ਇਨ ਯੋਰ ਜਰਨੀ ਫਰਮ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਔਰ ਵੈਨ ਯੂ ਫਸਟ ਸਟਾਰਟਡ ਪਲੇਇੰਗ ਸੋਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ?
10: Hanji, I think when I was growing up, I was blessed with talent. And I think mere mum dad ne bhi mainu bahut push kita football ch. Ta I think from a young age, yeah, I was training hard. And yeah, I think when I reached about 15, 16, I realized that I can do more with this. That's when I started playing for the New Zealand under 17s. And yeah, from there I moved to Wellington after that, and that's when it became serious for me. And yeah, as you know, I'm Punjabi parents, sometimes they don't push kids as much into sport, but I was lucky that my family did that for me, and they really did a lot for me. And yeah, I'm just happy that I can repay the favor now, and I can play on this world stage and make everyone proud.
9: Jee, bilkul. You mentioned that sometimes Punjabi parents, they're not as encouraging of their children. And ek gal zarur hai ki khas karke sports fields nu leke kai wari bachchan nu apni family di support inni jyada nahi mildi. Tuhade parents vallon ki reaction siga jadon tusi kya ki enu tusi as professionally karna chahunde aa? Kis tarah unna ne tuhadi support kiti? Thoda ja ide bare dass deo ji.
10: Hanji, bahut zyada support kiti si unni. I think jadon chhota si training te lajana kafi over see stores be hum desi utthe vi you know obviously paise laake jana penda si, so they did all that for me. And yeah, I think kai vari thoda jyada push karna pena. Obviously sade Punjabi, they push more towards school and things like that, all be very important. So it's just about balance, I think. And yeah, I was fortunate enough, and I was happy that they were able to push me and now I can reward them.
9: ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਵਰ ਦੇ ਅਦਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡਰਸ ਗਰੋਇੰਗ ਅਪ ਵਿਦ ਯੂ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ?
10: Yeah, but not so much in Wellington. I mean, in Auckland, there's big Punjabi community. And there's obviously a couple of Punjabi boys I used to play with growing up. And then obviously I had my uncle and my brother. I used to obviously train with them and play with them a lot growing up. I think more often with my uncle, and he used to play with all his friends. And I was just a young boy just joining in with all of them. And yeah, it was nice to do these sorts of things.
9: You had such a good support system around you growing up as you were getting into soccer. Now, if we talk about more of ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਕਰ ਖੇਡਿਆ ਆ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ 20 ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ 2024 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਹਾਓ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਫੋਰ ਯੂ ਐਂਡ ਵਟ ਵਰ ਸਮ ਆਫ ਦ ਕੀ ਟੇਕ ਅਵੇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਟੁੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ?
10: Yeah, I think they're huge tournaments. I'm fortunate enough, like you said, I was able to do the under-20s twice because the first time I did it, I was younger. And it's huge tournaments. You can really see how football brings everyone together, how it brings the whole world together. You know, I feel like the world stops for football, and it's the same with the World Cup that's starting now. So it's really an amazing experience. It's a lifetime of memories, you know, and something I'll look back on forever. And you know, once I retire, I feel like I'll cherish these moments even more. I think while you're playing, you're always competitive. So at the end of your career, you can look back and say you achieved many things in your career. But I think what's also important is what you do to help others, you know, and you want to be a role model and inspiration for the next generation. And, you know, that's where I also try and carry a lot of responsibility and do my best.
9: ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਾਂ ਐਨੀ ਮੂਮੈਂਟਸ ਵੇ ਯੂ ਫੈਲਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਬਿਟ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਇਟਸ ਹਾਰਡ ਟੂ ਸਟੇ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਐਂਡ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂ ਦ ਗੇਮ?
10: ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਐਨੀ ਕਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਵਿਦ 20 ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯੂ ਨੋ, ਇਨ ਜਰਮਨੀ ਬਾਈ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਸੋ ਯਾ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਚੈਲੰਜਸ, ਯੂ ਨੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਸਪੋਰਟ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ. ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਯੂਰਪ, ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਵਾਸ ਆਲ ਬਾਈ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਨੋ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਬੋਏ ਹੂ ਹੈਡ ਅ ਡ੍ਰੀਮ, ਯੂ ਨੋ, ਹੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਪਲੇ ਇਨ ਯੂਰਪ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨ ਸਪੋਰਟ, ਇਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ. ਐਂਡ yeah, I think that's something you have to be mentally prepared for, and not everything goes to plan, but you have to know how to just continue and continue to be better every single day, you know, because I think at the end of the day you'll get rewarded for it. It's just a process, so nothing's going to be straight in life, you know, many ups and downs, so it's been challenging. Especially there's a couple of injuries that I had throughout my career, which I feel set me back at certain moments where things could have been different, but it's my journey, you know. I'm grateful for all the challenges I learned during that, and now I can pass my experiences on and try and inspire the next generation.
9: Online at the social media te hor samagri labo sbs.com.au/punjabi te jao, ja Facebook te SBS Punjabi nu follow karo.
11: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए. तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती.
12: Hey, yo, G-Funk, the flavor.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील और एक नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंचुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. आज के शो की शुरुआत होगी फुटबॉल के उस पहलू से जो सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है. माफ करिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच हम जानेंगे कि कैसे फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में लोगों को जोड़ने, समावेशन बढ़ाने और समुदायों को मजबूत करने का जरिया बन रहा है. इसके बाद सुनेंगे रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर गिरिधरन सिवरमन के साथ खास बातचीत का दूसरा हिस्सा. कल के शो में हमने इस चर्चा का पहला भाग आपके लिए प्ले किया था और आज उसका दूसरा हिस्सा जो बाकी बातचीत है वो हम आपके लिए प्ले करेंगे. फिर एक रिपोर्ट उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, ईवी अपनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या जानना ज़रूरी है, इस पर हम नज़र डालेंगे. और अंत में भारत से एक प्रेरणादायक कहानी, बेंगलुरु के एक युवा ने अपने पेट डॉग को समय पर खून ना मिलने के बाद एक ऐसी पहल शुरू की जो आज कई शहरों में पशुओं के लिए ब्लड डोनर्स को जोड़ने का काम कर रही है. उनकी इस अनोखी मुहिम के बारे में जानेंगे की आखिरी रिपोर्ट में जो आपके लिए लेकर आएंगे फैसल फरीद. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी और ऐसी बात है गाने भी आपके लिए प्ले करेंगे बीच बीच में, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं आज की खबरें, आज की ताज़ा खबरें न्यूज फ्लैश में. मंगलवार 16 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. ऑस्ट्रेलिया की तरह 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने यूनाइटेड किंगडम की सराहना की है. यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि वो इस प्रतिबंध को और आगे बढ़ाएगा ताकि बच्चों और युवाओं को सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके. YouTube, Snapchat और Meta, जो Facebook और Instagram की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि इसका युवाओं पर उल्टा असर पड़ेगा. इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर भी कार्रवाई करेंगे जहां बच्चों को अनजान लोगों से बातचीत करने की सुविधा मिलती है. ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस यानी ACTU ने उन टैक्स रिफॉर्म्स का समर्थन किया है जो अभी सेनेट इंक्वायरी का विषय है. लेबर सरकार द्वारा कैपिटल गेन्स टैक्स और नेगेटिव गियरिंग पॉलिसी में किए गए बदलाव एक बिल का हिस्सा है जिस पर आलोचकों का कहना है कि इसे बिना पर्याप्त जाँच के संसद से जल्दबाजी में पारित किया गया. ACTU के असिस्टेंट सेक्रेटरी जोसेफ मिशेल ने कहा है कि ये बदलाव इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर्स को फ़ायदा मिल रहा था जबकि फर्स्ट होम बायर्स को नुकसान हो रहा था. मिडिल ईस्ट में कई महीनों से चल रहे युद्ध के कारण बढ़ती इन्फ्लेशन के बीच सरकार पीस डील के अर्थव्यवस्था पर असर देखने का इंतजार कर रही है. इन्फ्लेशन अभी भी RBA के टारगेट बैंड 2-3% से ऊपर बनी हुई है. वित्त मंत्री केटी गलहर ने ABC के न्यूज ब्रेकफास्ट को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही पीस नेगोशिएशंस का परिणाम भविष्य में सेंट्रल बैंक के फैसलों को प्रभावित करेगा. एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में ऑस्ट्रेलिया में ड्रग इंड्यूस्ड कॉजेज से मरने वालों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. पहली बार एक ही साल में अनइंटेंशनल ड्रग रिलेटेड डेथ्स 2000 से अधिक हो गई हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पेनिंगटन इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एनालिसिस में पाया गया है कि ये संख्या एक साल में 10% की बढ़ोतरी दिखाती है. पेनिंगटन इंस्टीट्यूट के CEO जॉन रियान ने कहा है कि देश अब स्थिति को नज़रअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे गंभीर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में से एक बन चुकी है. G7 लीडर्स आज और कल होने वाले बैठकों में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित पीस डील के बारीक पहलुओं पर चर्चा करेंगे. यूरोपियन देशों ने मिडिल ईस्ट में संघर्ष समाप्त करने के समर्थन की बात कही है, लेकिन साथ ही ये भी दोहराया है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोका जाना उनकी प्राथमिकता है. फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन के साथ मीडिया अपीयरेंस में अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील पहले ही साइन हो चुकी है और इसकी ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नेवल पैसेज के लिए किसी टोल की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने बातचीत से जुड़े आगे के विवरण पर कुछ भी बताने से इंकार किया है। G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन में फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। वहीं इसी समिट में गेस्ट नेशंस के तौर पर ब्राजील, इजिप्ट, इंडिया, कीनिया, साउथ कोरिया, खतर, यूक्रेन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल हैं। और अब खबर भारत से। भारत ने डीजल और एविएशन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्सेस में बढ़ोतरी की है, जबकि पेट्रोल पर ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी बयान के अनुसार डीजल के एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 13.5 रुपए था। वहीं ATF यानी एविएशन टर्बिन फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 9.5 रुपए से बढ़ाकर 12.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। ये नई दरें 16 जून से शुरू होने वाली अगले 15 दिन की अवधि के लिए लागू होंगी। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले की तरह 1.5 रुपए प्रति लीटर ही बनी रहेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू इस्तेमाल यानी डोमेस्टिक यूज के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। न्यूज फ्लैश के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और शो की पहली रिपोर्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूछ लेते हैं आज का सवाल। आज का सवाल एक्चुअली पर्सनली जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे था और मैंने मेलबर्न से एडिलेड की एक रोड ट्रिप की, जिसमें कई छोटे छोटे शहरों पर रुक के कई खूबसूरत जगहें देखी और रियलाइज़ किया कि मेलबर्न और सिडनी जैसे बड़े बड़े रौनक भरे चकाचौंध शहरों में तो एक अलग मज़ा है, लेकिन जो आपके रीजनल एरिया ऑस्ट्रेलिया में उनकी भी बड़ी यूनिकनेस है। और इसका एक बहुत अच्छा खूबसूरत मुझे एग्जांपल मिला माउंट गैम्बियर में, जो बिल्कुल मेलबर्न और एडिलेड के बीच में पड़ता है और बड़ी वॉल्केनिक कहानी है इसके पीछे, कैसे वहाँ कुछ लेक्स बने। तो सवाल आज का यह है कि आप बताइए कि आपका फेवरेट रीजनल इलाका या फिर कोई भी ऐसे छोटा इलाका ऑस्ट्रेलिया में जो आप घूमे हों और आपको बड़ा पसंद आया है और हमारी ट्रैवल लिस्ट में होना चाहिए, वो क्या है। 04397997667 हमारा नंबर है। आज अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा जहाँ शायद आप घूमने गए हों या घूमने जाना चाहते हों। 04397997667 आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। तब तक हम पहली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। ये रिपोर्ट है फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने फुटबॉल को एक बार फिर सुर्खियाँ में लाया है, लेकिन खेल के मैदान से परे फुटबॉल लोगों को जोड़ने, समावेशन बढ़ाने और समुदायों को मजबूत बनाने का भी माध्यम बन रहा है। प्रवासी समुदायों से लेकर स्थानीय क्लबों तक ये खेल अपनेपन और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा दे रहा है। इसी विषय पर यह रिपोर्ट आपके लिए लेकर आ रही हैं भव्या पांडे।
3: दोस्तों, फीफा विश्व कप 2026 शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया में एक बार फिर फुटबॉल चर्चा के केंद्र में है। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ। और फीफा विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए तुर्की को 2-1 से हराया है। कनाडा के वैनकूवर स्थित बीसी प्लेस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में युवा खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल के भविष्य को लेकर भी नई उम्मीदें जगा दी हैं। इस जीत के सबसे बड़े नायकों में 20 वर्षीय नेस्टरी इराकुंडा रहे, जिन्होंने मैच के 27वें मिनट में शानदार गोल कर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिलाई। इसके साथ ही वे विश्व कप में गोल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि बड़े स्टेडियम की चमक और ग्लोबल हेडलाइन से दूर ये खेल कुछ शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीकों से समुदायों को जोड़ने, पहचान बनाने और सामाजिक एकता को बढ़ाने का काम भी कर रहा है। लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति और पेशेवर फुटबॉलर जॉर्ज वीह के अनुसार फुटबॉल एक सार्वभौमिक भाषा है जो लोगों को उनकी राष्ट्रीयता, संस्कृति और विश्वास से परे जोड़ती है। और ऑस्ट्रेलिया में यही विचार एक नई SBS ऑडियो सीरीज ब्यूटीफुल गेम चेंजर्स के जरिए सामने आ रहा है, जिसमें 12 ऐसी कहानियां शामिल हैं जहां लोग फुटबॉल के माध्यम से बदलाव ला रहे हैं। इनमें से एक कहानी लैबिन गुरुंग की है, जो 1990 के दशक के मध्य में नेपाल से छात्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया आए थे। उन्होंने दक्षिण पश्चिमी सिडनी में सागरमाथा फुटबॉल क्लब की स्थापना में मदद की ताकि ऑस्ट्रेलिया में नए आए नेपाली समुदाय को जुड़ाव और अपनापन मिल सके।
4: We try to accommodate them. We help them in finding jobs. We try to keep them away from being lonely or being isolated from home. Through football, we try and reconnect them with the society.
3: समय के साथ इस क्लब ने समुदाय की एक गंभीर समस्या पर भी ध्यान देना शुरू किया, जुए की लत यानी गैम्बलिंग, खासकर नए आए पुरुषों में।
4: When we have someone who is suffering from a gambling problem in our club, we take it very seriously and we try to take it professionally as well. We try not to let other members know about his problem.
3: सिडनी के इनवेस्ट में फुटबॉल ने पहचान और समुदाय को जोड़ने का भी काम किया है। 1985 में एलिसन टॉड और ट्रेसी एटकिंसन ने फ्लाइंग बैट्स फुटबॉल क्लब की स्थापना में मदद की। वे बताती हैं कि इस क्लब की शुरुआत केवल फिट रहने की चाह से शुरू हुई थी।
5: We decided that we'd like to do some sort of activity to keep ourselves healthy. We thought about why don't we do soccer?
3: आज फ्लाइंग बैट्स को दुनिया का सबसे बड़ा LGBTQIA+ विमेंस और नॉन बाइनरी फुटबॉल क्लब माना जाता है। कुछ लोगों के लिए फुटबॉल पहचान और प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है। अलीरा टोबी, जो क्वींसलैंड में इप्सविच के कानुलो और गानगुलू समुदाय की एक वर्गित महिला हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उच्चतर पर फुटबॉल खेला है और अब नई पीढ़ी के लिए रास्ते बना रही हैं।
6: I think the closest thing for me was Kathy Freeman, which I mean probably sounds so cliche, but you know, I guess being an indigenous girl growing up, there wasn't many people that looked like me on television.
3: वर्तमान में वे जॉन मोरियार्टी फुटबॉल के साथ काम करती हैं, जहां हर हफ्ते लगभग 5,000 बच्चों के लिए फुटबॉल और वेलनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं।
6: If there's representation and there's opportunity and there's pathways, that really does open the door and change perspectives.
3: फुटबॉल शरणार्थियों यानी रेफ्यूजीज के लिए भी नई शुरुआत का जरिया बना है। सुलेमान जांडिनान, जो एक यजीदी रेफ्यूजी हैं और अब क्वींसलैंड की शीर्ष मेंस और विमेंस स्टेट लीग में रेफरी हैं, मात्र 12 वर्ष के थे जब उनके समुदाय पर आईसिस ने हमला किया था।
7: They destroyed everywhere. They killed thousands of people. They took me and 30 people from my family members.
3: ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उन्होंने फुटबॉल के जरिए एक नई दिशा पाई और अब वे अन्य शरणार्थी परिवारों की मदद करते हैं।
7: I want to show them that you have help. Like you can reach if you need help, and not just myself. There are many other people like me and better than me available and helping our community.
3: अफगान फुटबॉलर फातिमा यूसुफी, जो 2021 में काबुल से भागकर आईं, अब अफगान विमेंस यूनाइटेड के लिए खेलती हैं।
8: We can give that hope for all those girls who are in Afghanistan and thinking like you know nothing will change, but there will be a hope, and that's our message always.
3: ये 5 कहानियाँ SBS ऑडियो की ब्यूटीफुल गेम चेंजर सीरीज से है, जो दर्शाती हैं कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुड़ाव, पहचान और इन सब से आगे बदलाव का माध्यम है। इस पूरी सीरीज को देखने और सुनने के लिए sbs.com.au/beautifulgamechangers पर जाएं या SBS ऑन डिमांड पर देखें। इसके अलावा ताज़ा विश्व कप अपडेट्स के लिए SBS न्यूज हेडलाइंस सुनते रहें। SBS न्यूज के लिए साहिल मक्कर और पीटर थियोडोसियो की इस खबर को SBS हिंदी में आपके लिए लेकर आए भव्या पांडे।
2: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और आज के शो में हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि बड़े शहरों की तो रौनक अपनी होती है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन रीजनल एरियाज़ का भी जो यूनिकनेस है, जो खूबसूरती है, उसकी भी एक अलग बात होती है। और हाल ही में मुझे मौका मिला हॉर्शैम और माउंट गैम्बियर जैसी जगह देखने का, तो यही सवाल आपसे था कि आपको ऐसे कौन सी रीजनल एरिया बहुत पसंद है या आप देखना चाहते हैं। और हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं। क्यूरी लिखती हैं कि मुझे विक्टोरिया में बैलराट बहुत पसंद है, और एक और मैसेज आया है जिसमें ये लिखा गया है कि वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन विक्टोरिया इज ब्राइट, आई वॉज देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और वहाँ के जो पेड़ों के जो रंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, और बड़ा ही खूबसूरत होता है, और एक ऑटम सीजन में और इसको देखना तो बनता है। ये मैसेज हमें भेजा है राज मेहरा ने मेलबर्न से। तो आप भी बताइए 04397997667 पर कि आपको ऐसी कौन सी रीजनल एरिया पसंद है। और आई हैव बीन लकी कि कुछ समय ही हुआ मुझे ऑस्ट्रेलिया मूव करके, लेकिन ब्राइट शायद वो पहली जगह थी राजी जहाँ पे मैं गया था, और बैलराट में एक्टिविटीज़ करने को बहुत हैं। तो आपके पास वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बैलराट में, और उसके अलावा भी सॉवरन हिल और क्रिस्टा कैसल और काफ़ी मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं। तो 04397997667 हमारा नंबर है, आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा, और अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको मिलता हूँ इस एड ब्रेक के बाद, सुनते रहिए SBS हिंदी।
9: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
11: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
10: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
11: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
10: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
11: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
10: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
9: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
12: SBS Audio.
13: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
14: यही जवाब दिया। चुनबै हाल में।
15: SBS Chill.
16: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
17: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
18: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
19: Far from the partisan politics.
20: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार।

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven.
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
5: sbs.com.au/hindi ko apna online home banaiye. Taza tareen khabrein apni bhasha mein paiye. sbs.com.au/hindi par jaye. क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
6: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. मैं हूं नबील और अब वक्त हो गया गाने का, लेकिन गाने से पहले एक मैसेज जो आया है वो पढ़ देते हैं. हमने सवाल पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया की वो कौन सी ऑफ बीट लोकेशन है या फिर कोई ऐसा रीजनल एरिया जो आपको बड़ा पसंद है घूमने में, और कई लोगों ने मैसेज किया कि ब्राइट है और बैलराट है. और एक नया मैसेज आया है रीता दुआ का और डैंडेनोंग नॉर्थ से. वो कहती हैं कि आई लव टू गो टू ग्रैम्पियंस, आई लाइक द लुकआउट्स देयर. ये जगह है जो मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन हाँ मन जरूर है और इसे भी लिस्ट में लिखा जाएगा. आप बताइए आपकी वो कौन सी फेवरेट रीजनल एरिया या ऑफ बीट लोकेशन है जो आप देख चुके हैं या देखना चाहेंगे. 0439-799-767 हमारा नंबर है और अपना नाम जरूर लिख के भेजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हो गया है गाने का. गाना सुनेंगे, वापस आएंगे, कुछ रिपोर्ट और कुछ गाने. सुनते रहिए SBS हिंदी.

0: SBS हिंदी पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मैसेज आया है जफर जी का, वो लिखते हैं कि होल ऑस्ट्रेलिया इज़ ब्यूटीफुल बट आई लाइक हैमिल्टन आइलैंड, और ये जगह क्वींसलैंड में है, और वो लिखते हैं कि वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई मोटर कार्स नहीं है। और मेरा सजेशन है कि जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, अगर मौका मिले तो ये जगह ज़रूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिकमेंडेशन का। 04397997667 हमारा नंबर है। और हम आज पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ऑफ बीट लोकेशन, कोई रीजनल एरिया जो आपको बड़ा पसंद है, घूम चुके हैं या घूमने जाना चाहते हैं, वो हमें ज़रूर लिखकर बताएं, और अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा। 04397997767 हमारा नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे जुड़ी ज़रूरी बातें क्या हैं और क्या क्या आपको जानना चाहिए वो ख़रीदने से पहले, आइए जानते हैं वैशाली जैन की इस रिपोर्ट में।
1: क्या हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अनिश्चितता का असर आप भी महसूस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ रही है और सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं भी इस बदलाव को गति दे रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में ड्राइवरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना कितना व्यावहारिक है? नमस्कार, मैं हूँ वैशाली जैन और ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड की मिनी सीरीज फ्यूल इन फोकस के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव के बीच इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी ऑस्ट्रेलिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाले हर 6 वाहन में लगभग एक इलेक्ट्रिक वाहन था। हुसैन दिया स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में परिवहन प्रौद्योगिकी और सतत विकास यानी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के प्रोफेसर हैं। वे कहते हैं कि ईवी खरीदने की शुरुआती लागत अभी भी पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में अधिक है। हालांकि जैसे जैसे इनकी मांग और विकल्प बढ़े हैं, उनकी कीमतों में भी कमी आई है।
2: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
1: अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने राज्य या क्षेत्र की सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी जरूर लें। वेतन पैकेजिंग यानी सैलरी पैकेजिंग व्यवस्था में शामिल कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन लीज पर लेने पर टैक्स छूट का लाभ भी मिल सकता है। एलेक्स फॉरेस्ट रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वाहन और ईंधन विभाग के प्रबंधक हैं। वे इस बारे में विस्तार से बताते हैं।
3: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
1: पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन खर्च काफी कम होता है। अनुमान है कि ईवी चालक ईंधन पर सालाना 70% तक और सर्विसिंग और रखरखाव पर लगभग 40% तक बचत कर सकते हैं। हुसैन रिया बताते हैं कि व्यावहारिक रूप से इसका क्या अर्थ है और ये बचत वाहन मालिकों के लिए कैसे फायदेमंद साबित होती है।
2: इलेक्ट्रिसिटी इज मच चीपर देन पेट्रोल पर किलोमीटर। वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन इंपोर्टिंग इट लाइक वी डू विद पेट्रोल। And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
1: हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि यदि आप सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग करते हैं, तो बचत कुछ कम हो सकती है। इसकी वजह ये है कि सार्वजनिक चार्जरों पर प्रति किलोवाट घंटा बिजली की लागत आमतौर पर घर पर चार्ज करने की तुलना में अधिक होती है। तो फिर सवाल ये है कि मौजूदा बाजार में उपलब्ध इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज कितनी है और क्या ये रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त है?
2: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops especially in regional areas, there are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
1: यदि आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको समर्पित ईवी चार्जर लगवाने के लिए अपनी स्ट्राटा या बिल्डिंग प्रबंधन संस्था से अनुमति लेनी पड़ सकती है। हालांकि एलेक्स फॉरेस्ट का कहना है कि कई ड्राइवरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को घर के सामान्य बिजली सॉकेट में प्लग करके चार्ज करना ही पर्याप्त होता है।
3: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
1: ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिक वाहनों का व्यापक उपयोग अभी दो दशक से भी कम समय से हो रहा है, इसलिए इनके सेकंड हैंड बाजार का विकास अभी शुरुआती दौर में है। फिर भी पिछले कुछ महीनों में इस्तेमाल किए गए ईवी के प्रति उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ा है और उनकी रीसेल वैल्यू अब कई मामलों में पेट्रोल वाहनों के लगभग बराबर पहुँच गई है। और किसी भी नए वाहन की तरह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय बिक्री के बाद मिलने वाली सहायता यानी आफ्टर सेल सपोर्ट और सर्विसिंग सुविधाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विचार कर रहे हैं उन्हें बैटरी की वारंटी की शर्तों की भी अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का ईवी बाजार अब काफी प्रतिस्पर्धी हो गया है यानी कॉम्पिटिटिव हो गया है, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। एलेक्स फॉरेस्ट इस पर आगे चर्चा करते हैं।
3: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
1: Australia Explained के इसांश को SBS News से आपके लिए प्रस्तुत किया Zoe Thomadou और SBS हिंदी से वृषाली जैन ने। इसांश में दी गई जानकारी सामान्य है, अपनी निजी परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।
0: SBS हिंदी पर एक बार फिर वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं नबील और अभी आपने सुनी एक रिपोर्ट ईवी से जुड़ी। अगर आप भी कोई ईवी खरीदना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट में उसके से जुड़ी कुछ जानकारियां थी, जो इसका पूरा पॉडकास्ट आप हमारी वेबसाइट पर सुन सकते हैं sbs.com.au/hindi। और चलिए वक्त हो गया है एक गाने का, गाना सुनते हैं, फिर एड ब्रेक और एक आखिरी रिपोर्ट जिसमें फैसल फरीद आज फिर लेकर आएंगे एक प्रेरणादायक कहानी इंडिया से। बने रहिए SBS हिंदी पर।

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
3: Poetry, mate.
2: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
3: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
2: Ah, beautiful saying. You come up with that?
3: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
2: Tomato, tomato.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
7: SBS हिंदी पर एक बार वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी रिपोर्ट का वक्त हो गया है और उसके बाद एक गाने से अंत करेंगे प्रोग्राम। बेंगलुरु में एक छात्र आदित्य के पेट डॉग जिमी की खून की कमी के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद आदित्य ने पालतू जानवरों के लिए ब्लड डोनेशन की व्यवस्था बनाने का फैसला किया और bloodforpet.com नाम की वेबसाइट शुरू की। आइए जानते हैं इस पहलू के बारे में फैसल फरीद की इस रिपोर्ट में।
8: रक्तदान महादान होता है, इससे किसी का जीवन बच सकता है। आमतौर पर लोग सामान्यतः रक्तदान किया करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर भी गौर किया है कि मनुष्यों की तरह जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली एवं अन्य जानवरों को भी रक्तदान की आवश्यकता होती है। अब इसका एक ही तरीका है कि लोग अपने पेट एनिमल से ब्लड डोनेट करवाएं। ऐसा होता है लेकिन बहुत कम। इसके प्रति शायद इतनी जागरूकता नहीं है। सुविधाएं हैं लेकिन अभी उस स्तर पर लोगों में जागरूकता नहीं है। इन्हीं सब के बीच बेंगलुरु में एक छात्र आदित्य के पेट डॉग जिमी की मृत्यु ब्लड की कमी की वजह से हो जाती है। समय पर ब्लड की उपलब्धता नहीं हो पाई। आदित्य को इस बात से बहुत दुख हुआ और साथ में उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये एनिमल्स को जब भी आवश्यकता हो ब्लड उपलब्ध कराया जा सके। आदित्य अभी भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने एक वेबसाइट बनाई bloodforpet.com, जिसमें लोग अपने पेट डॉग की ब्लड की आवश्यकता के अनुसार संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने लोगों से अपने पेट डॉग से ब्लड डोनेट करवाने की भी मुहिम चलाई। लोग जुड़ते गए। बेंगलोर से शुरू हुई ये कहानी भारत के कई शहरों, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई जैसे शहरों में पहुँच गई। आदित्य ने हर शहर के लोगों का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया। इस प्रयास से आदित्य, जो अभी स्वयं एक छात्र हैं, उन्होंने 500 डॉग्स के लिए ब्लड की व्यवस्था की है। आदित्य अपनी इस पहल के बारे में बताते हैं।
9: हाँ, मेरा नाम तो आदित्य है। मैं पहले से बैंगलोर में थे। मैं 8th स्टैंडर्ड में मेरा एक डॉग था, उसका नाम जिमी था। वो मर गया क्योंकि उसका ब्लड ना आया टाइम पे, इसलिए हम सोचा ये शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद एक वेबसाइट की शुरू किया और उसके बाद वो ही थोड़ा बड़ा हो लिया। और उसके बाद हम ही एक वेबसाइट से व्हाट्सएप ग्रुप हुआ और उधर से बहुत ज़्यादा डॉग्स को हेल्प मिलने का शुरू हुआ और उसके बाद हम like we started helping our dog owners and connecting them with other dog owners who required blood. उधर से बहुत ज़्यादा dogs को help मिला. मैं तो अभी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ अशोका यूनिवर्सिटी में एंड मैं मेरा सेकेंड ईयर डिग्री में है और ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट है क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ के बारे में और हेल्प करने के लिए बहुत हाँ रेडी हूँ. इसीलिए मैं ये शुरू किया क्योंकि कोई डॉग ने मरना नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिला.
8: भारत में कई जगह पर ऐसे संस्थान हैं जो एनिमल्स के लिए ब्लड उपलब्ध कराते हैं. आदित्य कोई ब्लड बैंक नहीं चलाते हैं, वो बस एक माध्यम बन गए हैं कि लोगों के लिए सहारा हो गया है क्योंकि अधिकांश लोग तो जान भी नहीं पाते हैं कि एनिमल के ब्लड डोनेशन या ट्रांसफ्यूजन के लिए कहाँ जाएं.
9: बिल्कुल, हमारा तो एक तो क्लियर है, हम तो ब्लड बैंक नहीं है, हम एक डॉग कम्युनिटी है. मैं वो कम्युनिटी को मदद करते हैं कैसे, वो कोई आता है मुझको ब्लड चाहिए बोलकर, मैं उसको दूसरे डॉग ओनर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके साथ वही वो ब्लड डोनेशन का बात करते हैं और डॉक्टर के साथ जाते हैं और उधर करते हैं. ये तो पूरा नॉन प्रॉफिट है, वो लोग खुद आप उसके मर्जी से ही करते हैं. ये कोई भी ये स्टोरेज फैसिलिटी कुछ नहीं है अभी और पूरा एक कम्युनिटी एफर्ट जैसा है.
8: अब एनिमल में ब्लड डोनेशन को लेकर भी बहुत सी भ्रांतियां हैं. एनिमल्स के भी ब्लड ग्रुप होते हैं लेकिन कुछ अलग तरह के. सबसे बड़ी बात इसमें ब्लड डोनेशन में ब्रीड का कोई फर्क नहीं पड़ता है. जैसे एक जर्मन शेफर्ड भी ब्लड डोनेट कर सकता है और वो ब्लड किसी भी डॉग को उसके ब्लड ग्रुप मैचिंग के अनुसार चढ़ाया जा सकता है. छोटा डॉग भी ब्लड डोनेट कर सकता है और उसका वो ब्लड किसी बड़े डॉग को चढ़ाया जा सकता है. कमजोरी आना, ये सब भ्रांतियां हैं.
9: ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ना. हम जैसे ह्यूमंस भी ब्लड डोनेट करते हैं, बहुत ज्यादा लोग करते हैं ना ब्लड डोनेशन इधर से उधर तक. हाँ, वो क्या होता है, हम एक मिनट दो मिनट के लिए थोड़ा थक लाइक वी फील लिटिल टायर्ड फॉर लाइक टू मिनट्स पर उसके बाद हम फिर से ठीक हो जाते हैं ना. ऐसे ही होता है डॉग्स पे भी. और एक और बात है, डॉग्स में ब्लड ग्रुप कैसे ह्यूमंस में ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए नेगेटिव जैसे है, उस डॉग्स में भी ऐसी है डी ए नेगेटिव डी ए पॉजिटिव के नाम से. और उधर एक और एडवांटेज है, कोई भी डॉग डोनेट कर सकता है. ये नहीं है तो जर्मन शेपर्ड होगा तो जर्मन शेपर्ड की ही दे सकते हैं ब्लड, ऐसे नहीं है. एक पराया डॉग लोकल डॉग वो भी डोनेट कर सकते हैं जर्मन शेपर्ड के, और एक पोमरेनियन भी डोनेट कर सकते हैं जर्मन शेपर्ड के. वो ब्रीड का कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें. वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, मैं बहुत बार सुन लिया है कि हमारा डॉग तो डॉलमेशन है, कैसे एक जर्मन शेपर्ड डोनेट कर सकते हैं. वो कुछ भी नहीं है. और एक और बात है, तो ये तो बहुत नोबल कॉज है ना, कोई डॉग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ऑफकोर्स फीवर वो सब हो और या प्रेग्नेंट हो तो डॉग ब्लड नहीं डोनेट कर सकते, लेकिन ह्यूमंस में कैसे होते हैं ऐसे ही. लेकिन दूसरी टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं डॉग्स को. थोड़ा ब्लड से ही बहुत रिकवरी होता है. टिक फीवर जैसा प्रॉब्लम्स हुआ तो थोड़ा ही ब्लड चाहिए, 200 mm या 100 mm ऐसे और ml. और ये बहुत कम होता है ब्लड ह्यूमंस में, हम ऑलमोस्ट 500 ml तक डोनेट करते हैं ब्लड, लेकिन डॉग्स में बहुत कम होता है और कम से ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स भी होता है डॉग्स पे. तो ये मिसकंसेप्शंस बहुत है, कुछ नहीं होना चाहिए. हमारा वेबसाइट में भी हम लिखा है ये ऐसे नहीं है मतलब उसके बारे में, और हम इंटरनेट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में.
8: आदित्य की पहल डॉग लवर्स के लिए एक वरदान है. 500 से अधिक डॉग्स को ये ब्लड उपलब्ध करा चुके हैं. एक बार तो सिर्फ 5 मिनट में ब्लड उपलब्ध कराकर इन्होंने दिखा दिया जिससे एक डॉग की जान बच सकी. आदित्य अपने अनुभव बताते हैं.
9: ऑफ कोर्स, तो हाँ, सो सिंस वी आर अ डॉग कम्युनिटी, वी हैव आई डोंट नो हाउ मेनी कितना यूनिट्स ऑफ ब्लड डोनेट किया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अराउंड 500 डॉग्स को हेल्प मिला है हमारा कम्युनिटी से. और हम थोड़ा एक्सपैंड भी हुआ है, सिर्फ बैंगलोर में शुरू हुआ था और उसके बाद मैं अभी दिल्ली में पढ़ रहे हूँ, इसीलिए वो दिल्ली का ग्रुप है बॉम्बे का एक ग्रुप है, गुवाहाटी का है, भुवनेश्वर में है, बहुत ज्यादा इंडियन सिटीज में एक्सपैंड हुआ है ये ऑपरेशन। सिर्फ ये कम्युनिटी एफर्ट है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। सो डॉग ओनर्स वो ही ये ऑपरेशन को हेल्प करता है, कैसे है वो कनेक्ट करते हैं, वो ही हेल्प करते हैं दूसरी डॉग, वो ही हेल्प करते हैं, हमारा तो सिर्फ उसको वो मैड करने का, लाइक दैट्स द आर ओनली जॉब। इट्स लाइक थैंक्स टू ऑल द डॉग ओनर्स हु हेल्प्ड अस टिल नाउ एंड वन ऑफ देम हु सम टाइम हेल्प ही करते हैं, दैट्स वन थिंग। एंड अनदर इज दैट बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत लाइक द कंडीशन बहुत खराब होता है, कैसे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इट विल बी इन अनफॉर्चुनेटली इन द एंड स्टेजेस एंड दे वुड कॉल अस एंड वो बोलते हैं अभी क्या कर सकते हैं, हमारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, और हम भी बोलते हैं वो कम्युनिटी है हमारा साथ है, लेकिन हम बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे, कॉल करेंगे, वो सब करेंगे। लेकिन एक बार ऐसे इंस्टेंस हुआ था, वो बोल रहे थे 3 घंटे में चाहिए ब्लड, बहुत डॉग का तबीयत बहुत ठीक नहीं है, अभी टिक फीवर हुआ है, बहुत सीरियस था, अभी ब्लड चाहिए हम, ये बैंगलोर का था 1 साल पहले। और हम भी बोला हम ट्राई कर सकते हैं, कितना मदद कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन गारंटी, लेकिन लाइक लिटरली इट वाज अ मिरेकल दैट हम एक मैसेज डाल दिया प्लीज प्लीज करके मैं, और ऑलमोस्ट अराउंड 5-6 रेस्पॉन्सेज हमको आया वो डॉग को हेल्प करने के लिए, लाइक इन 500 टाइम्स। एंड दैट्स व्हेन हमको भी फील हुआ या दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ डिफरेंस, एंड वी सॉ दैट लाइक ओनर्स वर विलिंग टू हेल्प इन सच अ शॉर्ट टाइम, एंड इन दिस लाइक इतना फास्ट पेस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा टाइम, इतना ज्यादा मैसेजेस आते हैं ग्रुप में, बहुत ज्यादा लोग पढ़ ही नहीं थे, लेकिन उस टाइम लाइक टू मेनी पीपल हेल्प्ड आउट, दे रेड द मैसेज, दे विलिंग टू हेल्प आउट, एंड वो डॉग को मिला ब्लड, और अभी वो डॉग ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा डॉग था, सिर्फ 8 months का डॉग था, लाइक इट वॉजेंट अ वेरी ओल्ड डॉग, सो लाइक इतना ज्यादा मिला, और इट वॉज वन ऑफ इट वॉज अ वेरी हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हेन वी फेल्ट वी आर लाइक नॉट जस्ट अस, द एंटायर कम्युनिटी इज पुटिंग एन एफर्ट एंड वी कैन सी सच वंडरफुल रिजल्ट।
8: पशु बेजुबान होते हैं, आप पर निर्भर होते हैं, उनकी बीमारी का भी दायित्व हमारा है, ऐसे में आदित्य की ये पहल वाकई सराहनीय है। लखनऊ से फैसल फरीद।
7: SBS हिंदी पर मैं हूं नबील, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो में बने रहने के लिए। आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं तो मैं बस आपको एक गाने के साथ छोड़ जाऊंगा, और इस वादे के साथ कि एक और शाम फिर से मिलेंगे एक नए शो में, और बने रहिए SBS हिंदी के साथ।

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

चुप क्योंकि अमीरों की इजी बेल, अमीर है खुश क्योंकि गरीबों की लगी सेल। गलती है किसकी और बदले में कौन चाहता जेल, पन्ना है चीता या रहना तो मैं बस एक स्नेल। मजबूर हूँ कभी ना होती प्लेटफुल, हरकतें मानेगा समाज मेरी शेमफुल, अकेला ही करूंगा मैं सारा वेग पुल। याद रखना द वन एंड ओनली बिग पुल।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

नेचुरल।

तू वो जा रहा है कोई शब्द वीरा है मैं कदा फुम्मो सागर उदास तुम क्या गए के रूठ गए दिन।

0: ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: SBS South Asian।

0: हिट
1: आफ्टर हिट
0: आफ्टर हिट सारे तेरे कमड़े दिस इज SBS साउथ एशियन।

अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है। Been trying to hit fly boy, yeah, I'm a life up in high boy, yeah,

अरे घूट में सो आ गया। अरे घूट में सो आ गया।

Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

Get a